जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने, जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहा है, प्रभु जस मान रहा है। और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने, त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने, रहे लिव तहार न तहावत है, भटकना मुक जाती है, लिव जुड़ जाती है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना, और ये फल प्राप्त करदे ने। ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां। जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने, उन्हां नूं नरक दा डर नहीं, जम दा डर नहीं, ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी। गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए, आनंद लेंदे ने, रंग च रते होए,

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लै के उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी प्रवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी प्रवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

ये जो शब्द आप सर्वन कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़िया पदार्थां दे नाल नेउ लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे न जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाने उदे लई तू रात दिन भटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है। जिथे तू सदीवी काल वसना है, जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है, उस घर दी कोई तैनू चिंता ही नहीं। ए शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु दी जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नूं जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनूं भुखिया ही मार छड्या, उसनूं कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे बस्तर नहीं पहनाए, कदी सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के इशनान करके अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती नहीं करदा, तां तू अपनी आत्मा दा आप घात कर रहे। दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी हून जीवन कौन काम। हजूर कहंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे तावी कम कर जांदा है, दस काज सवार जांदा है,

अनमल खाई सिर छाई पाई मूर्खन रह पत गवाई बिनाए कि ठाए ना पाई रहे बेबाणी मणी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नगर करे सो पाए आसले से ते मैं केवल हो मैं शब्द।

मत फिटे ए अन्न साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन लिखे चुरी करेन तौलन तू सच आइए सुध होवे ता सच पाए पौड़ी जिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवरियाई आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडावण मेतरी सिरे सिर तंते लाएंदा नदरों पठी जे करे सुल्ताना का कराएंदा कर मंगल।

कहना दूजा एक नहीं आशकी दूजा लगे जाए नानक आस काटिए सगले कमाए कमे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आशकू।

बहुत लोग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ए लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी होईयां।

उसने कुरान शरीफ दी कसम खादी। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खादी है ये साडे ते हमला नहीं करने, पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साडे ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हैं

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे, कागज लिया उते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

गुरु नू ए बदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नू तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियां दे नाल अपने घरां नू पहुंचे, घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड

सिख ने ए गल करां वालियां ने सुनी उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्होंने कहा ठीक है अज गुरु नूं छड आए अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है कदू तक जीवोगे पतित होके जीना दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीना को जीना है एक दिन ते मरना है जे लड़दे मर जांदे गुरु दे सामने शहीद हो जांदे।

फिटकारा पईया, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है। सिर झुका के जीवना कोई जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा कर दिया मरना।

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबा ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमां तोड़ दितियां, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमां तोड़ दितियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

कोर्ट कपूरे पहुंचे, साहबा नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लैके पिछा करदा आ रहा है। तां गुरु साहबा ने कपूरे नूं कहा, कपूरे आ साडे पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहे है, तू अपना किला दे ताकि इथे असी ओदे नाल दो हथ कर लईए। कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है, पर औखा समा देखिया ता ए वी मुंह फेर गया। कहन लगा, महाराज मुगलां दा राज है, मैनू मुगलां कोल डर लगदा है, जे तुहानू किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने, वजीर मैनू खत्म कर देवेगा, बादशाह मैनू सजा देवेगा। ता गुरु साहबा ने कहा, जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी एहो जे लोग आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने, सिखी छड्डदे ने, अमृत

म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार के आई मैनू आज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं आज

ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपाना कढ़िया, हाथां विच ढाला फड़िया, जकारे छड़ दे, बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

यो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणन शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नु भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नु अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सो बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कटी हथा विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखेया उसने के ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह दा डंका बजाया वापस मुड़ गया हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सैंक दा पे है सा टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास पिया कर

जिथे कदी मौत नहीं, जिथे हमेशा जीवन है। जेड़ा अज तू उपकार कीता है, अपनी जान दे के एदा फल कदी भी खत्म नहीं होवेगा। भाई मां सिंह पूरा हो गया। आपां कई बार कह देने हैं कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है? पूरा तो होया है भाई मां सिंह, जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जिउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते ओदे प्यारे पूरे ने।

सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए।

खालसा मेरो भवन भंडारा, खालसा मेरो करत उधारा, खालसा मेरो सरजन परवारा।

सारे इन्हीं के भावत और अन्न के सेव सुहातन जी को दान दियो इन्हीं को बलो और अन्न को दान में लागत नी को आगे फल इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब फीको मोह गृह में तनते मनते सिर लो।

हे गुरु की संगत सिख एजुकेशन विद्या का प्रचार आहा ए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपनी दात निरंकार तो मंग रहे हैं झोली पा।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती, जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु ए संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतिया ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालक

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार कर

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। चन पखार करम गुर सेवा बार जाऊ लखबरिया। जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक प्रयत्न रिया।

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फली भूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे

अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे।